0: नमस्ते, मैं हूँ गौरव फ्रॉम द बैंड कोमोरोसी और आप सुन रहे हैं प्रॉगकोर रेडियो, द ओनली ट्रू प्रॉग रॉक एंड इंडी स्टेशन इन मॉन्ट्रियल।
1: Progcore Radio, the only station in Montreal dedicated to the playing of prog, rock and indie music.